बल दिवाहे गुर एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमरकै गुर नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होय सहाय। और जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईया जस डिठे सब दुख जाए। तेक बहादुर सिमरिया घर नौ निद आवे ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। पंजा प्यारिया सोहां साहिबजादियां चालियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया।

0: तग होवे जोर महला पहला
1: तग
0: ना मने पतू पजै साला हिस्सा सूत अंदर गए अंदर पाइया तग ना तूट सबूत महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी भलके थुक पाने दाड़ी तग ना पैरी तग ना हत्ती तग ना जिहवा तग ना अखी

0: पाए इसमें करी बराबरी फिर गैरत अंदर पाए भजोगवाई अगला मोहे मो पाना काए जिंदन तखावना इस कहीं ऐसा बास नाल उन दिले नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
1: पौड़ी चाकर लगे चाकरी दे चले खसमे।

रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिज तिर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कहत तो सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत कान हर बूंद बसो रो मावल कोसम बसंत गुणंत न आवे राव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर की कावजन पल उन्हें जो गावे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बाण आवे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बाण आवे ज्यों जान हो त्यों राख हर प्रभ तेरे केते गनो असंख अवगण मेरे असंख अवगण खते फेरे नित प्रत सद भूलिए मोह मगन बिकराल माया तो प्रसादी भूलिए लोक करत विकार बिखड़ी प्रभ नेर हूँ ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फिरिया जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे दया करहो किश मेहरे उपावहो डुब दे पत्थर तारे जीअड़ा अग्न बराबर तपे पीतर बग काती प्राणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती दर्शन प्यासी दिन सरात चित बहु अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत सुख टल गुर सेविए एहन सुसहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसमंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन

साचे नाम समाणी। शब्द मिले प्रीतम सदा त्याए, साच नाम बढ़ियाई पाए। आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए।

चरती प्रभ आप मिलाए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तन आसरी महला तीजा, सदा तन अंतर नाम संभाले। जीव जंत जिन्हें प्रतपाले, मुक्त पदार्थ तिन को पाए। हर के नाम रते लेव।

0: ताप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दसन दास तुदे आगे बिनवता श्लोक
1: पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत का।

0: तेरे कर नद वधाई तुत कर मान भत्ता तेज अपना अपजर सर्ब कला परपुर दिसे जत कता नानक दसन दास तुते आके बिन बता।
1: राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार।

तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सवेले रखो राखन हार दयाला नानक करके गोले दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत ना माया पाहे बुलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभया।

नानक सो प्रभ जाओ, नानक सो प्रभ जाओ, नानक सो प्रभ जाओ। तन तन श्री गुरु रामदास जी महाराज, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, महाराज महाराज महाराज महाराज।

सर्प कला भरपूर दिसै जत कता, नानक दासन दास तुद आगे बिनवत्ता जी तेरा नाम सच है। श्री वाहे गुरु। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दाई दाया खेलै सगल जगत, चंगियां या बुरियां वाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के लेड़े।

गए मशक्कत काल नानक ते मुखुजले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी।

तोई मैंने रगुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेरा मत होई सतगुर सजन मिलिया नानक नाम मिला ता जीवा तन मन थीब हरिया तरस पया मेरा मत होई सतगुर सजन मिलिया नानक नाम मिला ता जीवा तन मन थीब हरिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लहाइयां चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया दे सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही

रत्न पदारथ बहु सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम, गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया, निर्मोल करतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया, तेरी भगत भरे भंडारा, समंद बरोल शरीर हम देखिया, एक वास्ते अनूप दिखाई, गुर गोबिंद गोबिंद गुरु है, नानक भेद ना पाई, समंद बरोल शरीर हम देखिया, एक वास्ते अनूप दिखाई, गुर गोबिंद गोबिंद गुरु है, नानक भेद ना पाई, सो कहो टल गुर अहनस सहज दर्शन।

सजण सच पात साहु सिर साहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दजण सच पात साहु सिर साहंद

जिन्हें प्रत पाले मुकत पदार्थ तिन का पाए हर का नाम रतिल बलाए गुर सेवा ते हर नाम धन पावै अंतर

मसकत का नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरी है साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डी है खात पड़ी है जेते बर्स बर्स पड़ी है जेते मास पड़ी है जेते यार जा पड़ी है जेते सास नानक लिख एक गल और हो मैं जकना चाख महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया बहु तीर्थ भविया ते तों लव्या बहु पेख किया देही दुख दिया शोभे जिया अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र न पहरे ऐन सकैरे मोहन विगूता क्यों जागै गुर बिन सूता पग पिता अपना किया कमाना अलमल खै श्री शाही पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण नावै किश थाए न पाई रह बिबाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़ै निहुलगा विसरिया करता किस नाल की।

संत नाम भज नानक, राम रंग आत्म थ्यों रौ, होछो काज अल्प सुख बंधन, कोट जन्म कहाँ दुख पौ, सिखिया संत नाम।

माया मत कहाँ लो गारा, शतर न पतर न चौर न चावर, बहती जात हृदय ना बिचारो, रथ न असव न गज सिंघासन, छिन में त्यागत नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न कौ दिष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, कर्त विकार दोहु कर चारो, मित्र न पुत्र कर्तर साजन साख, उल्टत जात बिरह की शारो, दीन दयाल पुरख प्रापूरन, छिन छिन सिमरो अगम अपारो, श्रीपतनाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो, हे भगवंत।

0: पान मीठा सपोजन अंत की वार होत कत खारी नानक संत चरण स उदरे और माया मगन चले सब डारी।
1: ब्रह्मादिक शिव संत मुनीश्वर।

प्रिया प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत इसे त्याग आन को जाचा मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूर सिमर सुख।

0: अंत आप करियो है,
1: गुण समो फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी, औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रो खंडन गुणकारी, काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी, इशनान दान तापन सुच केरया चरण कमल हृदय प्रभ तारी, साजन मीत सखा हर बंद जी तान प्रभ प्राण अदारी, ओट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बलहारी।
2: आवधि कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग, दामन बंदियो ना जात विदे मन दर्श मग, पावक जर्यो ना जात रहो जन तूरे लग, नीर ना साक्ष बोर चले हर पंथ पग, नानक रोग दोख अग मोह सिदे हर नाम खग।

अहनिस सहज स्वभाये दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसमदी नूर अर सह कुर सह चटियाँ तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहद शाह जिस पास बैठिया सोही सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी बिलावल महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सो

त्रिग शरीर कुटुंब सहत सियो जित हुण खसम न पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवै।

त्रिग शरीर कुटुंब सहत सियो जित हुण खसम न पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे अहला जन्म

जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिनके तै दुख निवारे रहा तू दयाल दया पत दाता के आए हे जंत विचारे मुक्त बंद सब तुझते होए ऐसा आख बखाने गुरमुख होवे सो मुक्त कहिए।

0: दुआ प्रतपे का सत अगर थवा हो कल जुरथगन का कूड़ अगर थवा हो महला पहला।
1: श्याम कह स्तंभ स्वामी सच में अच्छे साच रहे।